ये कौन दे से कि चाय पाव में लूं यो लिया वाले कौन ना नुआ ताइवान किसान ने ईरान ने गंदी गा चीनी पाव तो बोला मिंडी को पहले जाली में लूं ले कमाया वाले क्या ऐनिश के वोच बंगा तेरे ने को सेलेक्टिंग से ने परे जब हम अमेरिकन पिज़ा उन्हें टांग कोरिया ने गए तो का ठीक टांग तड़ मरे खा मैं कोरिया मान जी कोरिया लेने टेलों में पियते ये टुए तो ये करी को वो को ठम्मा टीपू के जा रहे तेरे को ना सेमा जब हम नगें जाए वो जी मोटे की थोशी में तो अमेरिकन नगें जाओ ये वंजी मार्को रूबियो टांग कोरिया नगें जाए वो दी चो ह्योंग लो हा कुला तम का ट्रेन ये लगा सीओ डे चिंपा ने न्यूयॉर्क में मा ट्रेन लाने का ट्वीट संगे जा बारे इन्हें उपस्थित डेटा मा नहीं जाए ने टीने ये डे तो मुझे सही पुवां स्वयं मुहा अधिक तो जब पिता जाओ नहीं तो नहीं हा ले जुई चाले नीला ने ने सर ले पुवां स्वयं तो में सुरा को दुर्गा ठालाव टी पियू के जा बारे शिदाव आशाशी नेजा प्या जो याजु मूल या टिको टाइप से ये लुठो लुनी रे ने नहीं ने का भी ने कैसे ये चुपा मुड़ी तो पंपो मुगो पिंटिंग बो तुरु तबाट टुनी के जा बारे या कुरिया ने पता भी याशी रेगा आरम्भ फंसी खो समूह पियतना रे को छेछें पिशी ये पिं कुला वाम का लोन्यो इन काउंसी यूएनएससी सोमचा छेड़े ने नी या कुरिया मा न्यूक्लिया लोंवा केंसी ये तो गरी को पियचां ठमा डिप्यू के जा बारे ती नहीं को ठेतुन सिंजा भी तुरु तो इया तो ना डामामु अटेंचा पीरा रे लोपी तीसरे चीनी रे को टप्पत प्याऊं ले बो चूपा मुटे शीनी डागो मिंटू यारे डेटा रे चीनी को बेलू टो प्याम ले सुराग सुनी के जावरे ताइवान जी लजार शब न्यू ने टीन्यू को ठेंग देंगो ये चीज़ तुरुगा लेबे प्योचा के वाले तीजाने ने मिस्टर मुटे की ने मिस्टर रूबीरो हा ट्यूनिंग पावन पत्ता ने रखे साझा टीपो मिंजन फले के जापी जापान अमेरिका महामी पम को खाईमा से ये अनेक अपुपां स्वामपो को ले तो बहुत टूनी के जा बार क्या बीए लगा पिपा के ले युद्ध ये चीमुरे का ने प्याले टूरांग ने निपोन नहीं आंगो काला से कुनी पंपो पे वो जापान सुया युएचे को जापान नंगे जाए उन्हीं का टोपो पियो जागे रे सुरेत्रिंग वाले नासेमा जब नहीं जाए उन्हें बोटे की दोषी में तो हाँ न्यूयॉर्क में जिम्बा ने कुला धंग में चुरी निला का सीजन ये बेजी पिने तने लाने का निपुण नहीं जाए उन्हें शिष्या खाने ने तो सोचे मां ऐडी सीजन को प्योचा के लाभ चपड़े मिस्टर बोटे की का जब नहीं आने ने ये वो सीमा निते कुनी पंपो मुड़े पिन काला लाने काला शी कुनी ठाप मुड़े पावे निपुण नहीं आने तो तने ने मिया या आलू को लुसांग पिपो शुए जाओ प्योचा के बारे मिस्टर खाना का चीज उठने आओ सभी निपुण नहीं आने ने जब नहीं आने आओ पावे प्योसों ने जब पिरे नहीं जाता थे शापु ये तो सोंगो जुबा ने जाओ पिसे प्योचा के बारे मिस्टर मोटे की का निपुण नहीं आये तीसरे जुबा मुड़े को सीमा गई ने मामा कांटे पहुंचे आप ही कुनी पंपों पे मेल लूले करीब यू के बारे चिकन साउंड पंपियो टूटा मुने पीरेंस सिवाय लोगों ने प्यो ठाउं येरो ने पता भी दुगा जी न्यों प्यो सू के बारे अकुने हाँ ननाइंगां तादामां ससाई ने कुने से भी अठाइमां ने पिटे डे ननाइंगां ससाई ओ पुमो टूटा आं सोने ताबु दुरु तबाट दुनी के जा बारे क्या उन्हां सोंदरे ने चिपां पेन ले गुम्ये नामु डारे जापान पेन लेबाइन डेटा नोटो चुनसे मा मोदी चंदा या तो मुझे पैसी सोशल मीडिया पे पागे था टेन लानी मा नन्ही पीवी सुरेत्र मावे ऐडी पे ने जा लू नसते उते अत सोशल के अभी ऐडी ठे मा संगाउ हा इसी का वाक्य वाजी मान्यो मा डेटाइंग के जाते दूरी पे पड़े ऐडी ते समुद्री ले मा पे ने ने ससते ते समुद्री ले पाऊ मारे वाजी मान्यो मा टेन लानी का म्यू खामा मा पीलो ठारे याजी आमुए वे नियामा डेटा का न्यू बांडू छाबी आमुई तंदा के जा बारे मिस नाकायामा मिकी मिबारी हा ऐडी आमुई तंदा तुरीरा माले पाव मारे तू हा अलुगाने एंगो कामावी प्याना रोमा ते सोंतवा के रख्चे बारे तू ये पागे हाया दुगा नन्हे टा काला को सोंतवा भी में वने चुके मुडे मयो पादी बे तमिगो लंसुन निजे लुप्यो बारे मुई पमाना म्यालों लु येनु म्यांसिन ने माची शंगे भी म्योले गांसी कावाई माची या मा येजी ये शामुले जीजे पिपा के बारे म्योये सोंगन सिसे मुया ऐडी या का मुई नो म्यांबाई बाई ने मुई नो म्यांबाई डे नसकुने या का ने हा सीवन लारे येरे को मिट्टे सिसे आम लो नहीं गुसरा दूषी के बारे टीमेटा मिशिल लगा पिपा के ले यहाँ पिंगले जा ये भी मिट्टे के भी बाई डे सिंजो शांडी
Jangan lewat ke barat. Di luar mienta muzak luniya kau tercuit. Mimpi mienta pihah. Bawang jengah mienta pihah. Nicias lewat ke barat. Hanish ke watch bangat ini kau tinsel ubi babi. Nasi api le. Jisu tu barat. Jangan cuci suhu bah.